कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो घड़ी वरना छड़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

सुन सातिया जी अहन मंगे प्रिय मित्रा मैं उदावन ऋतु में वसाना मैं वही बिंदु मैं लाम की रेलिया मैं हरित पे हाथुरिकली मैं वसंत कोटी मके वत मैं मुलु ऋतु अटम मैं मुलु ऋतु अटम मटे उबगी तुरा कहती सुन साथी आजी मैं हाँ नमागी प्रिय मित्र मेरी मेरे टनाटन माल की नीति ओ ये माल की आने ये माल वाले तो मेरी तो विचरा करती